रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि

0: Om Hospital and Research Center.
1: Brand to be associated with. Speed Break. Every hour, 10 minutes, it's time for Radio Kathmandu Speed Break.
0: प्रविधि पूर्वाधार र दक्ष चिकित्सक एकै छानामुनि
2: 25 वर्षदेखि स्वास्थ्य उपचारमा निरन्तर सेवारत निजी क्षेत्रको अग्रणी अस्पताल
0: ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चावेल काठमाडौँ
2: फोन नम्बर 01-4276-225 र 01-4576-225 ओम हस्पिटल वी केयर फर यु
1: 92.1 एट द स्पीड अफ लाइफ
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि
5: रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
5: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
6: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
5: घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ बर्जर पेंस

एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। कैसे लगा आपको? हटिए, आप जाइए।

0: Om Hospital and Research Center.
1: Brand to be associated with Speed Break. Every hour, 10 minutes, it's time for Radio Kathmandu Speed Break.
0: प्रविधि पूर्वाधार र दक्ष चिकित्सक एकै छानामुनि
2: 25 वर्षदेखि स्वास्थ्य उपचारमा निरन्तर सेवारत निजी क्षेत्रको अग्रणी अस्पताल
0: ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चावेल काठमाडौँ
2: फोन नम्बर 01-42-76-225 र 01-45-76-225 ओम हस्पिटल वी केयर फर यु
1: 92.1 एट द स्पीड अफ लाइफ

0: जनता केबल पांच दशक देखी
1: गुणस्तरीय प्लम्बिंग को पर्पज नाम
2: मार्बल का सीपीपीसी प्रोडक्ट हरू अमेरिकन लाइसेंस अंतर्गत उत्पादित अरु भन्दा 25% बढी प्रेशर बहन गर्न सक्ने क्षमता का साथ 50 वर्ष भन्दा बढी विश्वभरि रुचाइएको एनएसएफ अमेरिका द्वारा प्रमाणित फ्लोगार्ड ब्रांड साथै मार्बल का यूपीपीसी प्रोडक्ट हरू लेड फ्री यूवी रेसिस्टेंट र हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भएको
1: सुरक्षा घर को
3: साथ जीवन भर को

0: तपाई सुनिरहनुहुन्छ हिन्दी रिमिक्स गीतहरु रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज को नॉनस्टॉप हिन्दी रिमिक्स गीतहरुको साथमा
1: ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर

0: Home Hospital and Research Center.
1: Brand to be associated with Speed Break. Every hour, 10 minutes, it's time for Radio Kathmandu Speed Break.
0: प्रविधि पूर्वाधार र दक्ष चिकित्सक एकै छाना मुनि
2: 25 वर्षदेखि स्वास्थ्य उपचारमा निरन्तर सेवारत निजी क्षेत्रको अग्रणी अस्पताल
0: ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चावेल काठमाडौँ
2: फोन नम्बर 01-4276-225 र 01-4576-225 ओम हस्पिटल वी केयर फर यु
1: 92.1 एट द स्पीड अफ लाइफ

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बुटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।